राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पहा मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन बजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण।

सतगुर रहया भरपूर निनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूर। मुंदावनी महला पंजवा। थवाल विच तीन वस्तु पई सत संतोख विचार अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सुधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधार हो। एह वस्त तजी नह जाई नित नित राखोर तारो

जस समरत सो कोए सगले दुख जाहि। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

कर गरीबन वाद गुसैया मेरा माथा छतर तर जाकी छोत जगत को लगे ता पर तू ही टर

नवनमान ता मैं उत्पत्त होए समात सब ताही मैं जैसे पांच अंगुरी में सूखम कुनंगरिया है कंचन खचत नग सोबत है वाही मैं जैसे नीच जोन गनियत आत्माखी क्रम हीर नी हीर चीर मद उपजत सुख जाही मैं तैसे रविदास नाम बिदर कबीर भये नीच जात ऊच पद पाए सब काही मैं सो कहो टल गुर से अहनस सहज सुबह दर्शन परस गुरु का जन्म मरण दुख जाय हो सिफत खसान दे नूर अर सो कुर सो चटिया तो दड़ते

एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते निर्मल होए कर इस नाना

तेरी मर्जी का नहीं मेरी मर्जी का सौदा। ते सा संग जी भेजे बाबा नानक ना कर दवे भाई नहीं सजना इतने सच का व्यापार हों सच का सौदा मिलता। ते अज सिख भी इदा का हो गया कहिंदा बाबा भाई होर हट्टी भाल लैने इतने कितने हट्टिया का घाटा बथेरे ठग तुरे फिरदे हट्टिया ला ला के सिक्खी दे भेस दे विच आपां होर कोई बाबा लभ लैने। सो गुरु प्यारे ओ साडा बाबा पुत मरवा के सौदे दिंदा इत्थे सिरां दे सौदे हुंदे आ इत्थे आप गवाईए तां चौपाईए और कैसी चतराई इत्थे पहलां आप गवाउणा पैंदा है जद जुड़ना प्रीतम प्यारे ना फिर तन कटवाउणा पैंदा है। सो तन कटवाउण वालिआं ने जिद्दां सौदे लै सो उहनां दा जिक्र

0: नित न वस्त अली आल मेर चा चागुन अरे।
1: हां जी, बास जाल नित इथे जमक न वस्त अली आल, अली अल पाठ स्वरूपां दे विच इकट्ठा छापिया है, पर साध संगत जी अलग अलग पाठ पढ़ना जिवें ग्यानी जी ने उचारना, लिखती रूप भी पदछेदां दे विच संपर्दा दे विच अलग अलग अलग पढ़ाया जांदा। ते अगला शब्द है मेर चा चागुन, चचा जिहड़ा है पहला उहनू अलग कर लैणा, ते दूजा जिहड़ा चागुन पाठ है उदा चचागुन पाठ सरूपां दे विच छपिया है, पर संपर्दा दे विच चा चागुन रे इदा पाठ जिवें ग्यानी जी ने उचारण कीता है। बास जाल नेत ना वस्त अली आल मेर चा चागुन रे इदा जिवें उचारण सरवण कीता है इसे तरह ही करना जी।
0: चंद कमुदनी दूरह निवसास अनपाओ कारण रे।
1: ते कुमदनी पाठ पोला ही करना, कुमदनी नहीं करना, कक्के दी भी औंकड़ है ममे दी भी औंकड़ है, ते इथे होर किसी अखर ते जोर नहीं देना। चंद कुमुदनी दूरह निवसस अनपाओ कारण रे।
0: अमृत खंड दूध मद संचस तूब न चातुर रे।
1: हां जी, ये भी पाठ तूब न, तूब जिहड़ा है बब्बा जिहड़ा है ओह तू दे नाल जोड़ देना, तूब न ते ना नूं नखेड़ के साध संगत दी पढ़ना। जदों आपां लड़ीवार सरूपां च पढ़दे उत्थे नहीं इह भरम रहि जांदा, क्योंकि सारे दे अखर संगली बीड़ जिहनूं कह दिंदे आम पंजाबी भाषा दे विच उत्थे साध संगत दी, पर इह जदों पदछेद कीता गया पदछेद वालिआं ने पता नहीं इह पाठ अगे पिछे किवें कीते हन। सो संप्रदायी जिहड़े साध संगत जी भाग शब्द ने उहनां दे विच इह पाठ तूब न जां जिहड़े लड़ीवार तों पढ़दे हन इह संप्रदा दे विच पढ़ाया जाण वाला पाठ अमृत खंड दूध मद संचस तूब न चातुर रे।
0: अपना आप तू कबह न छोड़स पेसन प्रीत ज्यो रे पंडित सांग वस।

0: उड्डा नह हंस नह कंध चीजै मारू महला पहला।
1: इस शब्द दे विच जो चपल शब्द आया है पद आया है ते इनू ज्ञानी जी ने तीन चार वार पोला ही उचारण किया, इसे तरह पोला उचारण करना है।

0: ने इथे प्रतख रूप दे विच वचन कीते हन। गुर नानक उपदेश कहत है, महाराज कहिंदे हे गुरसिखो इह गुरबाणी रूप उपदेश कह रहे हां तुहानू, जो सुने जिहड़ा सुनेगा सो पार प्राणत हो पार लंघ जावेगा इस संसार भव सागर तों।
1: मारू महला पंजवा गुप्त करता सांग सो प्रभ दहकावाय मनुखाय
0: मनुखाय। मैनु थोड़ा जा गेतर ला के जिवें ज्ञानी जी ने उचारण कीता है ते नन्ने ते थोड़ा जा जोरना जोर दे के मनुखाय जिवें उचारण कीता।

सूर मुगता शशि मुगता ब्रह्म ज्ञानी अलिपाय स्वभावत जैसे बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाय जिस कर्म खुलिया तिस लहिया पड़दा जिन गुर पह।

मात गर्भ मह जिन प्रत पारिया, जीओ पिंड दे साज सवारिया, सोई विधाता खिन खिन जपिया, जिस सिमरत आव गुण सब टकिया, चरण कमल और अंतर धारहु, दिखिया बाण ते जीओ उधारहु, करण पलाह।

अखयो पाठ करना अखयो नहीं करना, जिवें उचारण कीता अटल अखयो, एड़े नूं अगेतर ला के अटल अखयो देवा मोहन अलख अपेवा, अखयो तो भाव नास रहत। हांजी।

नहीं पटन, नहीं पारखो, नहीं गाहक, नहीं मौत। कबीर सिंह ने एक राम नाम का हीरा लभे है। अजीबो गरीब अवस्था की प्राप्ति हो गई है। ये हीरा हुण मैं देना चाहना, वेचना चाहना। कहिंदे ने संसार का जब धन किसी नूं प्राप्त होवे छुपाने की कोशिश करता है, पर जब कभी रब्बी दौलत मिलती है उसनों तो उसके अंदर एक दसण की भुख पैदा हो जाती कि मैं बाकियों नूं भी दसा। हर मनुख एक बहुत वड्डी खान है हीरे ते रतना। सारे पहाड़ों में सोना चांदी नहीं आता, समुद्र की सारी थां दे उते हीरे मोती नहीं आते, पर हर जीवन के अंदर प्रभु का नाम है। नवनिध अमृत प्रभु का नाम, देही में इसका विश्राम। कोई भी जीवन खाली नहीं कि उसके अंदर परम जीवन ना होवे, परम आनंद ना होवे। कबीर कहते हैं मैं तलाश कर रहा उस मंडी दी, उस बाजार दी, जिथे हीरे बिकते ने मैं बेचना चाहना। राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन। पटन कहते ने बाजार नो, आप कहते कोई बाजार ही नहीं है, कितने बेचा। हुण हीरा ते जौहरी बाजार विच बिकेगा ना, हीरिया की मंडी च बिकेगा। सब्जी मंडी ते हीरे नहीं बेची दे, और सब्जी मंडी ते सब्जी खरीदन दे ग्राहक आणगे, गाजरां मूलियां लैण वाले आणगे, सब्जी लैण वाले आणगे, कोई हीरे लैण वाले थोड़ी आणगे। कबीर कहिंदे ने हीरा कोल है वेचना चाहना, जो अगमी दौलत मैनू मिली है मैं दसना चाहना, जो अगमी रस मैनू मिले है मैं जगत नू समझाना चाहना। हीरा मिले है बेचना चाहना, मंडी कोई नहीं। पता है मंडी की है? सत्संग। हर शहर में सत्संग नहीं होगा, हर जगह सत्संग नहीं होगा। गली गली विच मंदिर है, सत्संग किधरे किधरे। गली गली विच गुरुद्वारे ने, सत्संग किधरे। सुनिया पईया ने मस्जिदां, खाली पे ने मंदिर, या किधरे कद पुजारी बेचारा बैठा ते घड़ियाल बजा रहे, कुछ भी नहीं। टेपां चल दियां पे। हुण मशीन बंदगी करे, हुण मशीन कीर्तन करे, क्योंकि मनुख दी मशीन ते कीर्तन करना नहीं चाहिए। चलो होया घर विच बैठ के सुन लिया, पर हुण सत्संग विच भी मशीनां चल दियां ने। बैराज साहब का पाठ टेप ला लो, आसा दीवार का कीर्तन टेप ला लो, सुनो। और किसी हद तक मनुख भी मशीन होता जा रहा, जो सारा दिन भी टेप रिकॉर्डर के अंदर कीर्तन चलता रहे, सारी जिंदगी चलता रहे, तो टेप रिकॉर्डर ने कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाना? बस मनुख भी इस तरह का ही होगा, ये भी मैच कर दें, मशीन ही होगी। मशीन की तरह की, यंत्र की तरह सब कुछ हो रहा है। जागृतता नहीं है, सुचेतपना नहीं है। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। जिड़ा कम जितना कीमती होवे, अहम होवे, खास होवे, उस विच उतनी एकाग्रता चाहिए, उतनी गहराई चाहिए, उतना ध्यान चाहिए। धर्म का तो मतलब ही है ध्यान साधना। गुरु से ध्यान नहीं है तो जे धर्म की यात्रा शुरू नहीं होगी। कबीर कहते हैं कोई पटन ही नहीं है, कोई बाजार ही नहीं है। हिंदुस्तान के दो इतिहासक शहर ने, एक आगरा एक जयपुर। इन दो शहरों में बाजार ने उन्हों का नाम है जौहरी बाजार। आगरे का जौहरी बाजार अकबर ने बनवाया से, जयपुर का जौहरी बाजार महाराजा जय सिंह ने बनवाया से। अकबर के समय, राजा जय सिंह के समय, इन्ह दो बाजारों हीरिया की खरीदो

गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उंज ते शरीर दा हर अंग अपने आप दे कारामद है, महान है और उसकी महिमा वर्णन नहीं कीती जा सकती। हर अंग महान है लेकिन फिर भी किसी जगह पे पहुंचना है तो पहले रास्ता दिखाई दे दे। रास्ते का दिखाई देना बड़ा लाजमी है। फिर चलन वास्ते पैर भी होवन। विखाई देंदा है चलन की तौफीक नहीं, रस्ता देखे आया व्यर्थ हो गया। लेकिन मैं अर्ज करा चलन की तौफीक है, रस्ता ते नहीं दिखाई देंदा। ऐसा मनुख ऐसा त्यास पीता जाता है, समा जरा ज्यादा लग जाएगा, भटकदया पहुंच जाएगा। रह गई गई गल हुण अंतरीव दुनिया दी। परमात्मा नूं जिहड़ा समझना है जानना है इते रस्ते दा वेखना है। इस तरह दे जानकार जानन वाले रस्ते नूं समझन वाले इन्हां दी तादाद बथेरी है, घट नहीं है। बड़े ज्ञानी ने इस्लामी दुनिया च भी जो कहिंदे ने खुदा ला शरीक है ला मकान है, उहदा कोई थां टिकाणा नहीं, उहदा कोई शरीक नहीं, वह ला महदूद है, उहदी कोई सीमा नहीं। इस तरह भारत विच बौद्धी क्या, जैनी क्या, सनातनी क्या, सारे ही कहिंदे ने बेअंत है, जात पात तो न्यारा है, रंग रूप तो न्यारा है, वर्ण भेख तो न्यारा है, उदी कोई सीमा नहीं, बेअंत है, बेअंत है। सिख जगत विच भी करीबन करीबन ज्ञानी यही कुछ कहते हैं, बेअंत है, बेअंत है, लेकिन मनुख दा मन बेअंत तो प्रभावित नहीं। असीम है, असीम है, लेकिन मन उस असीम तो प्रभावित नहीं है। कारण सिर्फ रास्ता दिखाई देता है, मंजिल नहीं है। जैसे किसी थान पे सी पहुंचना है कि किसी ने रास्ता दस देता या रास्ता दस रहा है नाल है तो रास्ता तो दिखाई दे रहा है, जिथे असी पहुंचना है उते नहीं। जगत विच परमात्मा दे रस्ते दे भी बड़े झगड़े ने, ये भी मैं अर्ज कर दिया। वक वक मंत्रां दा रटन ये रस्ता है। राम जपना, अल्लाह हो जपना, ओम जपना, गोविंद जपना, वाहेगुरु जपना, सोहंग जपना, ओम जपना, ये सब मंत्र रस्ता ने, मार्ग ने। फिर मार्ग दे उते चलन दे अपने अपने ढंग ने, कोई दौड़दा है, कोई आस्ता चलता है।

से बदलता भी है ये भी महस कर देना, क्योंकि तो मजहब बदलने बदलना है, धर्म बदल लेना, शायद उठे कोई गल हो गए। जिंदगी कईयां दी रस्तियां च लंघ जाती है, लेकिन बेशतर दुनिया वो है जिन्हां नूं रस्ते दी भी समझ नहीं, ज्ञान नहीं, इस पासे दा शौक नहीं है। अगर रस्ते दी समझ आ गई है तो मंजिल तो प्रभावित नहीं है, नमाज पढ़ रहे ने खुदा तो प्रभावित नहीं है, इन्नी महज कर दें। बाणी पढ़ रहे ने गुरु तो परमात्मा तो प्रभावित नहीं है, पूजा पाठ कर रहे ने भगवान तो प्रभावित नहीं है, फिर क्यों कर रहे ने भगवान कोलों कुछ मंग देने, खुदा कोलों कुछ मंग देने, वो जड़ी मंग है उस तो प्रभावित ने, जो देन वाला है दाता उस तो प्रभावित नहीं है। और मंग नाल कई दफा इस तरह जुड़ जाते ने, इस तरह जुड़ जाते ने, देन वाला तो कभी चेता ही नहीं आता, दात प्यारी विसरिया दातारा कभी चेता ही नहीं आता, उसकी तो कभी याद ही नहीं आती, उसकी दात प्रभावित कर रही है, दाता प्रभावित नहीं कर रहे है, क्योंकि दात प्रभावित कर रही है, दात होर मिले होर मिले तो कोई नमाज पढ़ रहे है, कोई पूजा पाठ कर रहे है, कोई बाणी पढ़ रहे है, कोई गुरुद्वारे जा रहे है, कोई मंदिर मस्जिद जा रहे है, सब दात नाल जुड़े हुए ने, दात दी मंग, दाते दी कोई खबर नहीं, मंजिल दी कोई समझ नहीं, रस्तियां दी थोड़ी बहुत समझ है, इस रस्ते ते चल के शायद इस दात दी प्राप्ति हो जाए, इस मंत्र दे जप नाल, इस तरह दे पूजा पाठ नाल, इस तरह दी साधना नाल शायद ऐ चीज मिल जाए, ऐ वस्तु मिल जाए। तो सारी दुनिया विच इस तरीके दे नाल धार्मिक लोग करीबन करीबन 99% ओ ने जो दात लई सब कुछ ए कर रहे ने, दाते लई नहीं, दाते तो प्रभावित नहीं। जब दात तो प्रभावित नहीं ते दात लई कुछ कर रहे ने, तो गुरु अर्जन देव जी कहंदे ने ते व्यापारी ने, कोट मधे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी, इन्ना नमाजियां देच, इन्ना पूजा पाठ करन वालियां देच, इन्ना बाणी दा जप करन वालियां देच, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां जान वालियां, साहिब कहिंदे कोई करोड़ां च इक अद सेवक हुंदा जो दाते तो प्रभावित है, परमात्मा तो प्रभावित है, खुदा तो प्रभावित है, ईश्वर तो प्रभावित है, सतगुरु करोड़ां च इक कह रहे हैं। चलो ये मैं गिनती भी थोड़े सामने रख दिया जो अनुभवी पुरुषां ने की है। किसी मस्जिद विच 10,000 दे करीब नमाजी होन, किसी चर्च विच 10,000 मनुख बैठे उन प्रेर करन वास्ते, किसे मंदिर विच 10,000 दा किधरे इकट्ठ होवे पूजा करन लई दर्शन करन लई, ते किसे गुरुद्वारे च किधरे 10,000 दे करीब सत्संगी बैठे होवन, उन्हां च इक जग्यासू हुंदा जाग पिया, थोड़ी समझ आ गई, पता चल गया, परमात्मा का पता चल गया, समझ आ गई है, मैं दात तो प्रभावित सी, दाते तो प्रभावित नहीं, दाते दे प्रति जाग पिया, दाते तो प्रभावित हो गया, सिर्फ प्रभावित होया, सिर्फ प्रभावित होया। पहले दिन वाले कहे शब्द में जरा

तेरे चले ओ केवल नाम, जिन्हों कह मिल साध संगत भज केवल नाम। नाम जप संगत विच बैठ। एक राजा उन्हें बहुत लंबा समा राज किया, तो राज करके उन्हें बहुत दौलत जमा की, बहुत रियासत अपने विच मलाईया। अखीर उदा मन जेड़ा वो अंदरों बहुत दुखी रहन लग पाया, ना उदी अगे औलाद चंगी निकली, ना उन्हों राज भाग में सुख मिलया, ना मखमली सेजा उत्ते सुख मिलया। बहुत कुछ कट्ठा करके भोग के भी मन नहीं सुखी। तो साध संगत वो दुखी होया मन, बहुत सारे राजे अखीर विच पागल होके मरे, क्योंकि ये माया बंदे नूं पागल कर दिंदी। तां जदों वो राजे की हालत इस तरह की होण लग पई, उहदा वजीर बड़ा सियाणा सी, उहने कहा जी फलानी जगह एक महापुरश है, साधु है, जे उहदे कोल चलो उहदे कोल गया मन नूं शांति मिलदी। तो तुर पिया, कहिंदा चलो फिर। राजा वो वजीर दे नाल अपने सैनिकां सिपाहियां नाल पहुंचया। जदों फकीर कोल गया, उन्हों जानदिया महात्मा नूं वो अपने हंकार विच बोल के दसदा, कहिंदा मैं एड्डा वड्डा राजा हाँ, इन्नियां रियासतां मेरे राज विच ने, इन्नी मेरे कोल फौज सेना है, अज तक मैं किसे कोल कुछ मंगण नहीं गया। जो कुछ मैनूं चाहिदा मैं धक्के नाल वो खो लैंदा, जे किसे नूं बुलाउणा मैं अपने दरबार विच सद्दा, जे कोई चीज़ चाहीदी मैं वो अपने हुक्म नाल मंगा लैंदा। पर कहिंदा अज मैं पहली वार तुहाडे कोल महात्मा जी कुछ मंगण आया, मेरा मन बहुत दुखी रहिंदा है, राज भाग सब कुछ है, ना मेरी औलाद अगे पुत्र कोई चंगे निकले ने, राज भाग मखमली सेजा ते सुख नहीं मिल रहा। ये कई बार जिंदगी च इस तरह हुंदा है, जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता। कोठी बहुत वड्डी होएगी, पैसा बहुत होएगा, पर नींद नहीं सही आएगी। मखमली सेजा होणगियां, तुहानू नींद ले गोली खानी पैंदी है। तो राजा बेचारा बहुत दुखी, उन्हें महात्मा नूं कहा मन सुखी हो जाए, अंदरों मन तृप्त हो जाए किसी तरह, कहदा उहदे वास्ते मैनूं कोई इलाज दसो। हुण महात्मा जाणदा सी गल्लां नाल इहदे उत्ते असर नहीं होना, इहनूं कोई प्रैक्टिकल विखाउणा चाहीदा। तो महात्मा समझ गए वी राजा जिहड़ा सवाल कर रहा ना, इह दिलों कर रहा है, इह मनों चाहुंदा है कि मैनूं सुख मिल जाए। दो तरह के सवाल हुंदे ने, एक बंदे दे दिल चो निकलदा है, एक दिमाग चो पैदा हुंदा है। जिहड़े दिमागी सवाल ने, दिमागी प्रश्न कोई क्वेश्चन ने, वह सिरदर्दी का कारण बनते हैं। बहुत लोगों को दिमागी सवाल ने अज, और माफ करो वह सवाल उन्होंने नहीं है, वह किसी होर को सुने हुए ने, दिमाग में रखे हुए ने भी आप करने ने सवाल। बहुत लोगों के सवाल ही नहीं मुक रहे, ये सवाल बहुत लोगों का होंगे। आ वीडियो जदों कोई नवी जी किसी तरह इंटरनेट पर पै जाती है, नाल ही लोग सवाल कर लग पे ने, कहते भाई साहब जी वो मच्छी मीट की बहुत वीडियो आ रही है, खाना चाहिए किदा करना चाहिए, लिखा हुआ मर्यादा में। बहुत लोग तो साढ़े को सर्टिफिकेट लेना चाहते ने भी ये कह देन भी ठीक है, फिर असी खाई जाइए। तो साध संगत ये लोगों के समाल सवाल जोड़े दिमागी ने, दूजे को सुने हुए ने, तुहानू करनगे, तो बाद किसी होर नू करनगे, वह सिरदर्दी का कारण बनते, उन्होंने उत्तर नाल कोई मतलब नहीं हुंदा। तो जदों राजे का सवाल सुनिया ना, महात्मा समझ गया कि यह सवाल बंदा दिलों कर रहा है, ये दिलों चाहता है कि मैनू सुख मिले। राजे ने कहा मेरा मन तृप्त हो जाए, मैं अंदरों सुखी होना चाहता है, मन बड़ा दुखी है। तो महात्मा ने कहा कोई गल नहीं, तू मेरे को बैठ, बोली ना जबान तो सिर्फ देखी जा, बोली ना जबान तो सिर्फ वेखी जा, दोपहर तक तेरिया मुश्किलों का हल हो सकता है। राजा बड़ा हैरान होया भी मुश्किलों के हल वास्ते तो समझाना चाहिए सी, ये महात्मा कहना वेखी चल, तू बोली ना कुछ भी, हुण तू वेखी चल, दोपहर तक तेरा हल हो सकता है। वो राजा बह गया, महात्मा आराम नाल बैठा, अपना भजन बंदगी की, फिर उठाया, थोड़ा टहलिया टूलिया, उदे आश्रम विच एक दो फल लगे सी, दरखत सी फलों वाले, उन्हें फल खाधा, फिर अपना टहल के
ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वाल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह के होर दुख हैं, इन्हां सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। ऐथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहे हैं। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

0: जयपुरा
1: कहां विष्णुपद का वै गुंग
0: जतन करै तो भी सुर भंग
1: कह पिंगल पर्वत पर भवन
0: नहीं होत उहा उस गवन
1: करतार करना मैं दीन बेनती करै
0: नानक तुम्हारी कृपा तरै
1: संग सहाई सो आवै न जीत
0: जो बराई ता स्यो प्रीत
1: बलुआ के गृह भीतर बसै
0: अंत केल माया रंग रसै
1: गृह कर्मा ने मन प्रतीत
0: काल न आवै मूड़े चीत
1: बैर विरोध काम क्रोध मोह
0: झूठ पकार महा डोब त्रोह
1: क्याहु जुगत बिहानी कई जन्म
0: नानक राख लिहो अपन कर कर्म
1: तू ठाकुर तुम पै अरदास
0: जीव सब तेरी रास
1: तुम मात पिता हम बारिक तेरे
0: तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे
1: कोई न जाने तुमरा अंत
0: ऊचे ते ऊचा भगवंत
1: सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी
0: तुमते होए सो आज्ञाकारी
1: तुमरी गत में तुम ही जानी
0: नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक
1: दिन हर प्रभु छोड़ के लग आन सुहाई
0: नानक कहूं नसी जाई बिन नाम पत जाए अष्टपदी
1: दस बसूले पाछे पावे
0: एक बस्त कारण बिखो टकवावे
1: एक पीना दे दस पी हिरले
0: दो मूड़ा को कहां करे
1: जिस ठाकुर से ना ही चारा
0: ताको की जय सद नमस्कार
1: जाके मन लगा प्रमीठा
0: सर्व सुखता हु मन बुठा
1: जिस जन अपना हुक्म मनाया
0: सर्व थोक नानक तिन पाया
1: अगंत शाह अपनी दे रास
0: मात पीत बरत अनंत उलास
1: अपनी ईमान कश बहो शाह होले
0: अज्ञानी मन रोस करे
1: अपनी प्रतीत आप ही घोवे
0: और उसका विश्वास न हो
1: बस्ते से आगे रख
0: की आज्ञा मन है मत
1: उसके चौगुण करे निहाल
0: नानक साहेब सदा दयाल
1: अनक भांत माया के हित
0: सरपर होवत जान अनेत
1: बिरख की छाया से रंग लावे
0: ओ बिन सह ओ मन पछतावे
1: जो दी सह सो चालन हार
0: लपट रहे होते अंधे अंधार
1: घटाउ स्यों जो लावे ने
0: ताको हाथ न आवे के
1: मन हर के नाम की प्री सुखदाई
0: कर कृपा नानक आप ले लाई
1: मिथ्या तन धन कुटुंब सुपाया
0: मिथ्या होमे ममता माया
1: मिथ्या राज जोगन धन माल
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल
1: मिथ्या मिथ्या
0: रंग संग माया पीक हस्ता
1: मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान
0: मिथ्या आप से ऊपर करत गुमान
1: सिर भक्त साध की शरण
0: नानक जप जप जीवै हर के चरण
1: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहे
0: मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे
1: मिथ्या नेत्र पेखत पात्रिया रूपाद
0: मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद
1: मिथ्या जन्म पर विकार कुता वहे
0: मिथ्या मन पर लोभ लबावे
1: मिथ्या तन नहीं पर उपकारा
0: मिथ्या पास लेत बिकारा
1: बिन बूझे मिथ्या सब भये
0: सफल दे नानक हर हर नाम लये
1: मिथ्या साक्त की आरजा
0: साच बिना कह होत सुचा
1: बिरथा नाम बिना तर अंध
0: मुख आवतता कह दुर्गंध
1: बिर सिमरन दिन रैन बिरथा विहाई
0: एक बिना ज्यों खेती जाए
1: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम
0: कृपण के निरार्थ दाम
1: धन तन तेजन दे कट बस्यो हर नाउ
0: नानक ताके बल बल जाओ
1: रहते अवर कश अवर कमावत
0: मन ही प्रीत मुखों गंड लावत
1: जानन हार प्रभु प्रवीन
0: बाहर पीक न काहू भीन
1: अवर उपदेश है आप न करे
0: आवत जावत जन्म मरे
1: जिसके अंतर बसे प्रभाप
0: इसकी सीख तरह संसार
1: जो तुम भाने दिन प्रभ जाता
0: नानक निजन चरण पराता
1: करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने
0: अपना किया आपे मन
1: आपे आप करत नबेरा
0: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा
1: पाप सियान सकल ते रहत
0: सब कछ जाने आत्म की राहत
1: जिस भावे तिस लए लड़ लाए
0: शांत अनंतर रहा समाए
1: सो सेवक जिस कृपा करी
0: निमक निमक

0: अष्टपदी
1: रोटी गांडन हर गोपाल
0: सर्व जिया आपे पत पाल
1: सगल की चिंता जिस मन माहे
0: इसदे व्रता कोई नाहे
1: रे मन मेरे सदा हर जाप
0: अवनासी प्रभु आपे आप
1: अर्पण किया कछु न होए
0: जिसो प्राणी लोचै कोई
1: जिस बिन नाही तेरे किस काम
0: रत नानक जापे हर नाम
1: रूपवंत होए नाही मोह
0: सब की जोत सगल घट सो है
1: धनवंता होए क्या को घर पै
0: सब कुछ तिसका दिया धर पै
1: हत सूरा जे को कहावे
0: रब की कला बिना कहता वे
1: जे को होए बहे दातार
0: इस देन हार जाने का वार
1: जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग
0: नानक सोजन सदाया रोग
1: ज्यो मंदिर को थामे थमन
0: ज्यो गुर का शब्द मने अस्थमन
1: ज्यो पाखान नाम चढ़त रे
0: प्राणी गुर चरण रक्त निस्तर
1: ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश
0: दर्शन देख मन होए विकास
1: ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावे
0: ज्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावे
1: जिन संतन की बांछो धूर
0: नानक की हर लोचा पूर
1: मन मूर्ख काहे बिरलाई है
0: गुर लिखे का लिखिया पाई है
1: दुख सुख प्रभु देव नहार
0: अवर त्याग तू तिसै चितार
1: जो कछ करे सोई सुख मान
0: ला काहे फिरे अजान
1: कौन बसते आई तेरे संग
0: लपट रहो रस लोभी पतंग
1: राम नाम जब हृदय माहे
0: नानक पद से ती कर जाहे
1: जिस वक्र को लैन तू आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: आज मान लेहो मन मोल
0: राम नाम हृदय मैं तो
1: लाद खेप संता संग चाल
0: अवर त्याग बिखिया जंजाल
1: धन धन कहे सब कोई
0: मुख उजल हर दरगह सोए
1: एहो व्यापार बिरला व्यापार है
0: नानक ताके सतबर हार
1: चरण साध के तोय तोय पियो
0: हर प्रसाद को अपना जियो
1: साध की धूर करो इशनान
0: साध ऊपर जाइए कुर्बान
1: साध सेवा वट भागी पाई है
0: साध संग हर कीर्तन गाई है
1: अंत बिगन ते साधु राख है
0: हर गुण गाय अमर तरस चख है
1: ओट गई संत हंदर आया
0: सर्व सुख नानक ते पाया
1: मित्र को जी वाल नहार
0: भूखे को दे बते आधार
1: सर्व निधान जा की दृष्टि माहे
0: गुरब लिखे का लहना पाए
1: सब किस तिस का वो करना है जोग
0: जिस बिन दूसर हवा न होग
1: जम जम सदा सदा दिन रहनी
0: शक्ति उच निर्मल एक करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया
0: नानक सोजन निर्मल थिया
1: जाके मन गुर की प्रतीत
0: जिन आवे हर प्रभु चीत
1: भगत भगत सुनिया तिह लोए
0: जाके हृदय एको होए
1: सच करनी सत्ता की रहत
0: सच हृदय सतमुख कहत
1: साची दृष्ट सचा आकार
0: सच पर तैसा चापा सार
1: पार ब्रह्म जिन सच कर जाता
0: नानक सोजन सच समाता श्लोक
1: रूप नरेख नरंग किछ त्रिह गुण ते प्रभु भिन्न
0: सब बुझाए नानका जिस होए सो प्रसन्न अष्टपदी
1: अवनासी ब्रह्म मन मह राख
0: मानो की तू प्रीत त्याग
1: इससे परे नाही किछ होए
0: सब निरंतर एको सोए
1: आपे बिना आपे दाना
0: गैर गंभीर गहीर सुजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
0: कृपा ध्यान दयाल बख्शंद
1: साथ तेरे की चरनी पाऊ
0: नानक मन हे नराव
1: मनसा पूर्ण सरना जोग
0: कर पाया सोई हो
1: हरन भरन जाका नेत्र फोर
0: इसका मंत्र न जाने होर
1: अंध रूप मंगल सद जाके
0: सर्व थोक सुनिए करता कह
1: राज महराज जोग मह जोगी
0: तप में तपेसर कृष्ण मैं भोगी
1: त्याई त्याई भक्ता सुख पाया
0: नानक दस पुरख का कने अंत न पाया
1: जाकी लीला कीमत नाहे
0: सगल देव हारे अवगाहे
1: पिता का जन्म के जाने पूत
0: सगल परोही अपने सूत
1: सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे
0: जनदास नाम ते आवे से
1: देह गुण में जाको परमाए
0: जन्म मरे फिर आवे जाए
1: पूत नीच तिसके स्थान
0: जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना रूप नाना जाके रंग
0: नाना पेख करे एक रंग
1: नाना विद किनो विसार
0: रबे बनासी एक अंकार
1: नाना चलित करे थिन माहे
0: पूर रहे पूर्ण सब ठाए
1: नाना विद कर बंत बनाई
0: अपनी कीमत आपे पाई
1: सब कर तिसके सब तिसके ठाउ
0: जब जब जीवे नानक हर नाम
1: नाम के तारे सगले जंत
0: नाम के तारे खंड ब्रह्मंड
1: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण
0: नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान
1: नाम के तारे आकाश पाताल
0: नाम के तारे सगले आकार
1: नाम के तारे पुरिया सब भवन
0: नाम के संग उतरे सुन श्रवण
1: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
0: नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
1: रूप सत जाका सत स्थान
0: सत के वर प्रधान
1: करतूत सत सत जाकी वाणी
0: सत पुरुष सब माहे समानी
1: सत कर्म जाकी रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत
1: सत करणी निर्मल निर्मली
0: दिशे बुझाए तिसे सब भली
1: सत नाम प्रकाश खुदाई
0: विश्वास सत नानक गुर ते पाई
1: सत वचन साधु उपदेश
0: सत ते जल जाके हृदय प्रवेश
1: सत नित बुझै जे कोई
0: नाम जबरता की गत होए
1: आप सत की असब सत
0: आपे जाने अपने मित गत
1: जिसकी सिफत सो करना है हार
0: अवर न बूझ करत विचार
1: करते की मित न जाने किया
0: नानक ज्योत स्वभाव है सो वर्तिया
1: बिस्मन बिस्म भय बिस्माद
0: जिन बुझिया तिसे आया स्वाद
1: करके रंग राज जन रहे
0: करके वचन पदार्थ लहे
1: होए दाते दुख काटन हार
0: जाके संगत रह संसार
1: जन का सेव सो वट भागी
0: जन के संग एक लिव लागी
1: गुण गोविंद कीर्तन जन गावे
0: प्रसाद नानक फल पावे श्लोक
1: आदि सच जुगादि सच
0: पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी
1: चरण सत सत प्रसनहार
0: पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पेकनहार
0: नाम सत सत त्यावनहार
1: आप सत सत सवधारी
0: आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्रभक्ता
0: सुरत सत सत जस सुनता
1: बुजनहार को सत सब होई
0: नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जनमानिया
0: नानक रावण तिन मूल पछाने
1: जाकर हृदय विश्वास प्रभाया
0: तत के अंत समान प्रगटाया
1: भय ते निरपो होए बसाना
0: जिसते उपजाय ते समाहे समाना
1: बस माही ले बस कटाई
0: ताको भिन्न न कहना जाई
1: बूझे बूझ नहार विवेक
0: नारायण मिले नानक एक
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जाने संग
0: का सेवक नाम कै रंग
1: सेवक को प्रभु पालन हारा
0: सेवक की रख निरंकारा
1: सो सेवक जिस दया प्रभु धारै
0: नानक सो सेवक सास सास समारै
1: अपने जान का पर्दा ढकै
0: अपने सेवक की सर पर रखै
1: अपने दास को देव डाई
0: अपने सेवक को नाम जप
1: अपने सेवक की आप पत रख
0: ताकि कदमित कोई न लख
1: आपके सेवक को न पहुंचे
0: आपके सेवक ऊंचते ऊंचे
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
0: नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया
1: नीकी कीरी मह कर रख
0: भस्म कर एलस कर कोट लाख
1: जिसका शासन काटते आप
0: ताको राखत दे कर हाथ
1: मानस जतन करत बहु भांत
0: जिसके कर्तव्य प्रथे जात
1: मारे न रख अवर न कोई
0: सर्व जिया का रखा सोए
1: आहि सोच कर हेरे प्राणी
0: जप नानक प्रभु लख बडाणी
1: बारंबार बार प्रभु जपी है
0: अपते मन तन तरपी है
1: नाम रत्न जन गुरमुख पाया
0: जिसके शेवर न ही दृष्टाया
1: नाम धन नामो रूप रंग
0: नामो सुखर नाम का संग
1: नाम रस जो जन तृप्ताने
0: मंतन नाम में नाम समाने
1: ऊर्त बैठ शोभत नाम
0: रहो नानक जन कै सद काम
1: बोलो जस जेवा दिन रात
0: रबे अपने जन की नी दात
1: करे भक्त आत्म कह चाई
0: रबे अपने सिर रहे समाई
1: जो हो वाह हो वत सो जाने
0: रबे अपने का हुक्म पछाने
1: इसकी महिमा कौन बखानो
0: इसका गुण कह एक न जानो
1: आठ पैर प्रभ से हजूरे
0: रहो नानक से जन पूरे
1: मर मेरे तिन की ओट लेहे
0: मंतन अपना तिन जन दे
1: जिन जने अपना प्रभु पछाता
0: सोजन सर्व दुख का दाता
1: किसकी शरण सर्व सुख पावहे
0: इसके दर्श सब पाप मिटावे
1: अब सियान पसगली छाड़
0: जिस जन की तू सेवा लाग
1: आप न जान न होवी तेरा
0: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा
1: श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाम
0: जिसके संग सिखी उदर है नानक हर गुण गावे अष्टपदी
1: सतगुर सेव की करे प्रतपाल
0: सेवक औगुर सदा दयाल
1: सिख की गुर दुरमत मल हिर
0: गुर बचनी हर नाम उचरे
1: सतगुर सिख के बंधन काटे
0: गुर का सिख बकार ते हटे
1: सतगुर सिख को नाम धन दे
0: गुर का सिख बड़ भागी हे
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवार
0: नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे
1: गुर के गृह सेवक जो रह
0: गुर की आज्ञा मन में सह
1: आप उसको कर कष्ट न जनावे
0: हर हर नाम हृदय सद ध्यावे
1: मन बेचे सतगुर के पास
0: सेवक के कार्य रास
1: सेवा करत होए निकामी
0: जिसको होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिस आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मतले
1: विश्व गुर का मन मान है
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: सो सतगुरु जिस हृदय हरना हो
0: नानक बार गुर कौ बल जाओ
1: सर्व निधान जी का दाता
0: आज पहर पार ब्रह्म रंग राता
1: ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म
0: एक आप नहीं कछ भरम
1: सह सियान पलिया न जाइए
0: नानक ऐसा गुरबट भागी पाई है
1: सफल दर्शन देखत पुनीत
0: वर्षित चरण गत निर्मल रीत
1: भेटत संग राम गुण रवे
0: पार ब्रह्म की दरगह गवे
1: सुनकर भजन करन आगानी
0: मन संतोखा तंपति जाने
1: पूरा गुर अखियो जा का मंत्र
0: अमृत दृष्टि पे कहे हुए संत
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस भाव तिस लय मिलाए
1: जे वाहे को सत अनेक
0: सतपुरख पूर्ण विवेक
1: कहूं बोल न पहुंचत पुरानी
0: अगमा गोचर प्रभु निर्वाणी
1: मेरा हार निर्वैर सुखदाई
0: ताकि कीमत किने न पाई
1: अनक भक्त बंदन नित करहे
0: चरण कमल हृदय सिमरै
1: सत बलहारी सतपुर अपने
0: नानक जिस प्रसाद सा प्रभु जपने
1: यो हर रस पावे जन कोए
0: अमृत पीवे अमर सो होए
1: उस पुरख का नाही कदे विनाश
0: जाके मन प्रगटे गुणता
1: आठ पैर हर का नाम ले
0: सच उपदेशे वको दे
1: वो माया के संग न लेप
0: मन में रखे हर हर एक
1: अंधकार दीपक प्रगासे
0: नानक भरम बहुत दुख ते नासे
1: सत माही ठांड बरताई
0: अनंत भया दुख नाठे भाई
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
0: साधु के पूर्ण उपदेशे
1: हो चुका निरपो होए बसै
0: सगल व्याद मन ते कह नसे
1: जिसका साधन कृपा धारी
0: साध संग जप नाम मुरारी
1: चित पाई चुके भ्रम गमन
0: सो नानक हर हर दा सरवण
1: निर्गुण आप सरगुण भी होही
0: कला धार जिन सगली मोही
1: अपने जगत प्रभु आप नाए
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: हर बिन दूजा नाही कोई
0: सर्व निरंतर एको सोए
1: ओत पोत रविया रूप रंग
0: भय प्रकाश साधक संग
1: राज रचना अपनी कल धारी
0: अनक बार नानक बलहारी
1: श्लोक साथ न चलै बिन भजन बिखिया सगली शार
0: हर हर नाम कमावन नानक हो तन सार अष्टपदी।
1: संत जना मिल करो विचार,
0: एक सिमरन नाम आधार,
1: अवरो पाप समीत पसारो,
0: शरण कमल विद मैं उरतारो,
1: कर्म कान सो प्राप्त समर्थ,
0: दृढ़ कर गहो नाम हर बथ,
1: केहो तन संचो हो भगवंत,
0: संत जना का निर्मल मंत,
1: एक आस रखो मन माही,
0: सर्व रोग नानक मिट जाहि,
1: जिस तन को चार पुट उठतावे,
0: सो तन हर से बाते पावे,
1: जिस सुख को नित बांचे मीत,
0: सो सुख साधु संग प्रीत,
1: जिस सोभा को करहे भली करनी,
0: सासो बापर हर की सरनी,
1: अन को पावी रोग न जाए,
0: रोग मिटे हर अवखद लाए,
1: सर्व निदान मैं हर नाम निदान,
0: जप नानक दरगह प्रवान,
1: मन प्रबोधो हर कह नाई,
0: दैत स्थापते बैठाए,
1: ताको बिघन न लागे कोई,
0: जाके हृदय बसे हर सोए,
1: कल ताती ठंडा हर नाओ,
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
1: अवबिन से पूर्ण होए आस,
0: भगत पाए आत्म प्रकाश,
1: हित कर जाए बसे अविनाशी,
0: तो नानक काटी जम फासी,
1: मत विचार कह जन साचा,
0: जन्म मरे सो काचो काचा,
1: आवागमन मिटे प्रभ सेव,
0: आप त्याग शरण गुरुदेव,
1: यूं रत्न जन्म का होई उदार,
0: हर हर सिमर पुराणे आधार,
1: अनको पाप न छूटन हारे,
0: सिमरत शास्त्र वेद विचारे,
1: हर की भगत करहु मन लाए,
0: मर वंशत नानक फल पाए,
1: संग न चार स्थे रह तना,
0: काल पटावे मूर्ख मना,
1: सोत मीत कुटंब हर बनेता,
0: इनते कहो तुम कवन सनाथा,
1: राज रंग माया विस्तार,
0: इनते कहो कवन छुटकार,
1: आस हस्ती रथ सवारी,
0: झूठा डंप झूठ पसारी,
1: जिन दिए तिस बुझे न बगाना,
0: नाम पसार नानक पछताना,
1: गुर की मातू ले आने,
0: भक्त बिना बहु डूबे सियाने,
1: भक्ति भगत करो मन मीत,
0: निर्मल होए तमारो चीत,
1: चरण कमल राखो मन माही,
0: जन्म जन्म के किल बिख जाहि,
1: आप जपो अवरा नाम जपावो,
0: संत कहत रहत गत पावो,
1: सार पूर सत हर को नाओ,
0: सहस भाई नानक गुण गाओ,
1: गुण गावत तेरी उतर समैल,
0: जनस जाय हो मैं बिख फैल,
1: होए अचिंत बसै सुख नाल,
0: सात ग्रासर नाम समाल,
1: छाड़ सियान सगली मना,
0: सात संग पावे सस्तना,
1: हर पूंजी संच करो व्यवहार,
0: हम सबदर गय जयकार,
1: सर्व निरंतर एको देख,
0: नानक जाके मस्तक लेख,
1: एको जाप एको सलाह,
0: एक समर एको मन आहे,
1: एक स्के गुण गाओ अनंत,
0: मंतन जाप एक भगवंत,
1: एको एक एक हर आप,
0: पूर्ण पूरे प्रव्याप,
1: अंत विस्तार एक ते भये,
0: एक अराध प्रास्त गए,
1: मंतन अंतर एक प्रभ राता,
0: गुर प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया, करया तो शरनाई,
0: नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए, अष्टपदी
1: जाचक जन जाचे प्रभ दान,
0: कृपा देव हर नाम,
1: साध जना की मांगो धूर,
0: पार ब्रह्म शब्दा पूर,
1: सदा सदा प्रभ की गुण गावो,
0: सास सास प्रभ तुम्हें ध्यावो,
1: चरण कमल से लागे प्रीत,
0: करो प्रभ की नित नीत,
1: एक कोट एक को आधार,
0: नानक मांगे नाम प्रभ सार,
1: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए,
0: रस पावे बिरला कोई,
1: जिन चाख्या से जान तृप्ताने,
0: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने,
1: सुपार परे प्रेम रस रंग,
0: उपजे चाहो साध का संग,
1: परे शरण आन सब त्याग,
0: अंतर प्रकाश अंधन निवलाग,
1: बड़ भागी जपया प्रभ सोए,
0: नानक नावर ते सुख होए,
1: सेवक की मनसा पूरी पई,
0: सतगुर दे निर्मल मत लई,
1: जान को प्रभ होए दयाल,
0: सेवक की नोसदा निहाल,
1: बंधन काट मुक्त जन पया,
0: जन्म मरण दुख भ्रम गया,
1: इच्छपुन्नी श्रद्धा सा पूरी,
0: रब रहया सत्संग हजूरी,
1: जिसका सा तिन लिया मिलाए,
0: नानक भक्ति नाम समाये,
1: सो क्यों बिसरे जे काल न पाने,
0: सो को बिसरे जे किया जाने,
1: सो क्यों बिसरे जे सब कुछ दिया,
0: सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया,
1: सो क्यों बिसरे जे अग्न मह राख है,
0: गुर प्रसाद को बिरला लख है,
1: सो क्यों बिसरे जे बिख ते काट है,
0: जन्म जन्म का टूटा गंढ है,
1: गुर पूरा तत् ए है बुझाया,
0: प्रभ अपना नानक जन त्याया,
1: साजन संत करो ए काम,
0: आन त्याग जपो हर नाम,
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
0: आप जपो अपने नाम जपावो,
1: भगत भाई तरी है संसार,
0: भक्ति तन होशी सार,
1: सर्व कल्याण सूप निद नाम,
0: मूढ़ जात पाए विश्राम,
1: सगल दुख का हो नाश,
0: नानक नाम जपो गुणतास,
1: उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ,
0: मंत्र अंतर ही स्वाओ,
1: नेत्रों पेख दर्श सुख होए,
0: मन बिक सह साध चरण धोए,
1: भक्त जना कै मन तन रंग,
0: बिरला को पावे संग,
1: एक बस दी जय कर माया,
0: प्रसाद नाम जप लिया,
1: ताकि उपमा कही न जाए,
0: नानक रहया सर्व समाए,
1: प्रभ बख्शंत दीन दयाल,
0: भगत बछल सदा कृपाल,
1: नाथ नाथ गोबिंद गोपाल,
0: सर्व घटा कृत प्रतपाल,
1: आदि पुरख कारण करतार,
0: जना के प्राण आधार,
1: जो जो जपै सो होई पुनीत,
0: भगत पाए लावे मन हीत,
1: हम निर्गुण यार नीच अजान,
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान,
1: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए,
0: एक निमक हर के गुण गाए,
1: अनक राज भोग बड़े आई,
0: हर के नाम की कथा मन पाई,
1: वो भोजन का प्रसंगीत,
0: रसना जपती हर हर नीत,
1: भली सो करनी सो बात धनवंत,
0: हृदय बसे पूर्ण गुरमंत,
1: साध संत प्रभ देहो निवास,
0: सर्व सुख नानक परगा, श्लोक
1: सरगुण निर्गुण निरंकार,
0: सुन समाधि आप। ਆਪਣ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਜਬ ਅਕਾਰ ਕਹੋ ਕਛ ਨਾ ਦਿਸਟੇ ਤਾ
0: ਆਪਨ ਤਬ ਕਹਤੇ ਹੋਤਾ
1: ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁਨ ਸਮਾਦ
0: ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕਮਾਤ
1: ਜਬ ਇਸਕਾ ਵਰਨ ਚਿਹਨ ਨਾ ਜਾਪਤ
0: ਤਬ ਹਰਕ ਸੋ ਕੋ ਕਸੈ ਵਿਆਪਤ
1: ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਆਰ ਬ੍ਰਹਮ
0: ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾ ਕਿਸ ਹੋਵਤ ਭਰਮ
1: ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀ ਜਾ
0: ਨਾਨਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਦੂਜਾ
1: ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ
0: ਤਬ ਬੰਧ ਮੁਕਤ ਕਹੋ ਕਿਸ ਕਹੋ ਗਨੀ
1: ਜਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹਰ ਅਗਾਮ ਅਪਾਰ
0: ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਕ ਕਹੋ ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ
1: ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ
0: ਤਬ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਕਹੋ ਬਿਤਠਾਏ
1: ਜਬ ਆਪ ਇਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰੈ
0: ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੈ
1: ਆਪਨ ਚਲਿਤ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ
0: ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮੈ ਪਾਰ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਨ ਆਸਨ
0: ਤੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੋ ਕਹਾ ਬਿਨਾਸਨ
1: ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਤਬ ਜਮਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ
1: ਜਬ ਅਵਗਤ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ
0: ਤਬ ਚਿਤਰ ਗੁਪਤ ਕਿਸ ਪੂਸ਼ਤ ਲੇਖਾ
1: ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਦੇ
0: ਤਬ ਕੌਣ ਛੁਟੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ
1: ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ
0: ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰ ਜਾ
1: ਜਹ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਤ ਹੋਤਾ
0: ਜਹ ਬਿਨ ਮੈਲ ਕਹੋ ਕਿਆ ਧੋਤਾ
1: ਜਹ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਨ
0: ਜਹ ਕੌਣ ਕਮਾਨ ਕੌਣ ਅਪਮਾਨ
1: ਜਹ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼
0: ਜਹ ਸ਼ਲ ਸ਼ਿਦਰ ਲਗਤ ਕਉ ਕੀਸ
1: ਜਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ
0: ਜਹ ਕਿਸੈ ਭੂਖ ਕਵਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ
0: ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹੀ ਸਮਾਰ
1: ਜਬ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਨ ਸੰਗ ਬਣਾਈ
0: ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਏ ਬਾਪ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਭਾਈ
1: ਜਹ ਸਰਵ ਕਲਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਵੀਨ
0: ਜਹ ਵੇਦਕ ਤੇਵ ਕਹਾ ਕਉ ਚੀਨ
1: ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਉਰਧਾਰ ਹੈ
0: ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ
1: ਜਹ ਆਪਨ ਊਚ ਆਪਨ ਆਪ ਨੇਰਾ
0: ਤੈ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਕਹੀਏ ਚੇਰਾ
1: ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ
0: ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਗਤ ਜਨ ਹੋਆ
1: ਜਹ ਛਲ ਅਸ਼ੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ
0: ਮੁਹਾਂ ਕਿਸੈ ਪਿਆਪਤ ਮਾਇਆ
1: ਆਪ ਸਕੋ ਆਪੇ ਆਦੇਸ
0: ਗੁਰ ਕਾ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
1: ਜਹ ਇੱਕ ਹੀ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ
0: ਤੈ ਕੌਣ ਅਚਿੰਤ ਕਿਸ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ
1: ਜਹ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਪਤਿਆਰਾ
0: ਤੈ ਕੌਣ ਕਥੈ ਕੌਣ ਸੁਣੈ ਹਾਰਾ
1: ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ
0: ਨਾਨਕ ਆਪ ਸਕੋ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚਾ
1: ਜਹ ਆਪ ਰਚਿਓ ਪ੍ਰਪੰਚ ਆਕਾਰ
0: ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਨੋ ਵਿਸਥਾਰ
1: ਪਾਪ ਗੁਣ ਤਹਿ ਭਈ ਕਹਾਵਤ
0: ਉਹ ਨਰਕ ਕੋ ਸੁਰਗ ਵਿਸ਼ਾਵਤ
1: ਕਾਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ
0: ਮੈਂ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭਾਰ
1: ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ
0: ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਉਹ ਬਖਿਆਨ
1: ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖੈ
0: ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੈ ਤੋ ਨਾਨਕ ਏਕੈ
1: ਜੈ ਅਵਗਤ ਭਗਤ ਤਹਿ ਆਪ
0: ਜੈ ਪਸਰੈ ਪਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ
1: ਤੂੰ ਪਾਪ ਆਪੇ ਧਨੀ
0: ਉਨਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੋਂ ਬਨੀ
1: ਆਪੇ ਕੌਤਕ ਕਰੈ ਅਨਦ ਜੋਜ
0: ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਜ
1: ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਆਪਨ ਨਾਇ ਲਾਵੈ
0: ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ
1: ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗੰਤ ਅਤੁਲੈ
0: ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੁਲੈ ਸਲੋਕ
1: ਜੀ ਜੰਤਰ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪੇ ਵਰਤਣ ਹਾਰ
0: ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਆਪ ਕਥੈ ਆਪ ਸੁਣਨੈ ਹਾਰ
0: ਆਪੇ ਏਕ ਆਪ ਵਿਸਥਾਰ
1: ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ
0: ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਲਏ ਸਮਾਏ
1: ਤੁਮ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹੋਏ
0: ਆਪਣ ਸੂਤ ਸਭ ਜਗਤ ਪਰੋਏ
1: ਜਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪ ਬੁਝਾਏ
0: ਸੱਚ ਨਾਮ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ
1: ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ
0: ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਜੇਤਾ
1: ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭ ਤਾਂ ਕੈ ਹਾਥ
0: ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ
1: ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੈ
0: ਸੋ ਮੂਹ ਆਜ ਸਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੈ
1: ਇਸ ਤਜ ਅਵਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ
0: ਸਭ ਸਿਰ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਏ
1: ਏਕੀ ਜੁਗਤ ਜਾਂ ਕੈ ਸਭ ਹਾਥ
0: ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾਨ ਸਾਥ
1: ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ
0: ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਹਾਰ
1: ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੇ ਦਇਆਲ
0: ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ
1: ਆਪਣੇ ਕਰਤਵ ਜਾਣੈ ਆਪ
0: ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਹਿਉ ਵਿਆਪ
1: ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੈ ਜੀ ਅਨੁਭਵ ਭਾਂਤ
0: ਜੋ ਜੋ ਰਚਿਓ ਸੋ ਤਿਸੈ ਧਿਆਤ
1: ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਈ ਮਿਲਾਏ
0: ਭਗਤ ਕਰੈ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ
1: ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮੰਨਿਆ
0: ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਣੇ
1: ਜਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਏਕੈ ਨਾਈ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਆਸ ਨ ਪ੍ਰਥੀ ਜਾਏ
1: ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨ ਆਈ
0: ਹੁਕਮ ਬੋਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ
1: ਇਸੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ
0: ਜਾਕੇ ਮਨ ਬਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ
1: ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਭਏ ਨਿਰਵੈਰ
0: ਹਰ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ
1: ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਏ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ
0: ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕਰੋ ਆਨੰਦ
0: ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ
0: ਦੁਰਲਭ ਦੇਖਾ ਕਰੋ ਉਧਾਰ
1: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ
0: ਰਾਮ ਤਰਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਭਾਵ
1: ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਭੇਖੋ ਨੇਰਾ
0: ਹਟਿਆ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਸਹਿ ਅੰਧੇਰਾ
1: ਸੁਖ ਉਪਦੇਸ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੋ
0: ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੋ
1: ਹਲਤ ਪਲਤ ਤੋਇ ਲਿਹੋ ਸਵਾਰ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਉਰਧਾਰ
1: ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦਿਖਿਆ
0: ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਤੇ ਸਾਚ ਪਰੀਖਿਆ
1: ਮਾਤਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਲਿਵ ਲਾਏ
0: ਦੁਖ ਦਰਦ ਮਨ ਤੇ ਪਹੁ ਜਾਏ
1: ਸਚ ਵਾਪਾਰ ਕਰੋ ਵਾਪਾਰੀ
0: ਦਰਗਹਿ ਨਿਭੈ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ
1: ਇਕ ਆਟੇ ਕਰ ਰਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ
0: ਨਾਨਕ ਪਹੁਰ ਨ ਆਵੇ ਜਾਹੇ
1: ਇਸੇ ਦੂਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ
0: ਉਬਰੇ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਤੇ ਆਏ
1: ਨਿਰ ਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ
1: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁਖ
0: ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ ਸੁਖ
1: ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੈ ਹੰਕਾਰ
0: ਇਸ ਜਨ ਕੋ ਕੋਈ ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰ
1: ਸਿਰ ਉਪਰ ਠਾੜਾ ਗੁਰਸੂਰਾ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ
1: ਮਤ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਉਦਰਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ
1: ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਂ ਕੇ ਅਨੂਪ
0: ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਰੂਪ
1: ਘਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਵਾਨ
0: ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ
1: ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋਹਤ ਨਿਹਾਲ
0: ਤਾਕੈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵਤ ਕਾਲ
1: ਅਮਰ ਭਏ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਸਲੋਕ
1: ਗਿਆਨ ਨਿਰੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ
0: ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ
0: ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਏਕ ਘਟ ਮਾਹੀ
0: ਅਨਕ ਰੰਗ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ
1: ਨੌ ਨਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ
0: ਇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ
1: ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਅਨਹਦ ਤਹਿਨਾਦ
0: ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈਏ ਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ
1: ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਦਰ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ
1: ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ
0: ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ
1: ਧਰਨ ਮਾਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ
0: ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ
1: ਅੰਤਿਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
0: ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ
1: ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਤਰ ਮਾਹੀ
0: ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਾ ਦਿਸੈ ਸਮਾਹੀ
1: ਇਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਠਾਉ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਉ
1: ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮਹਿ ਦੇਖ
0: ਸਸਿਆ ਸੂਰ ਨ ਖਤਰੇ ਮੈਂ ਏਕ
1: ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ
0: ਆਪ ਡੋਲ ਨ ਕਬ ਹੁਣ ਡੋਲੇ
1: ਸਰਬ ਕਲਾਕਰ ਖੇਲੈ ਖੇਲ
0: ਬੋਲ ਨ ਪਾਈਏ ਗੁਣੇ ਅਮੋਲ
1: ਸਰਬ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਗੀ ਜੋਤ
0: ਧਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਸਾਸ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਵੇਖਣ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ
0: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ
0: ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ
1: ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਿਤ
0: ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ
1: ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ
0: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ
1: ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਭੀ ਹੋਈ
0: ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹੀ
1: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ
1: ਇਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਾਰ
0: ਇਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਏਕੰਕਾਰ
1: ਅਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹਿ ਜਾਏ
0: ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ
1: ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ
0: ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ
1: ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ
1: ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ
0: ਸਰਬ ਨੈਣ ਆਪ ਖਨਹਾਰਾ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਕਾ ਤਨਾ
0: ਆਪਣ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ
1: ਆਪਣ ਜਾਨਿ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ
1: ਸਭ ਕੈ ਮਤ ਅਲਿਪਤ ਹੋ ਰਹਿ
0: ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹੈ
1: ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਜਾਪਾ ਵੈ ਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਈ
1: ਇਸੇ ਹੋਈ ਸੁਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ
0: ਉਰੇ ਕਹੋ ਕਿਨੈ ਕਛ ਕਰਾ
1: ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤ ਅਤ ਨੀਤੀ
0: ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ
1: ਆਪ ਸਾਜ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ
0: ਬੋਤ ਬੋਤੇ ਆਪਣ ਸੰਗਰਾਚ
1: ਤਾਂ ਕੀ ਗਰਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ
0: ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਜੀ ਪਾਏ
1: ਇਸ ਕਾ ਕੀ ਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਨ
1: ਜੋ ਜਾਣੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸੋਹੇ
0: ਆਪ ਮਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
1: ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ
0: ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦਾ ਭਗਵੰਤ
1: ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ
1: ਜਾਣਿਆ ਮਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ
0: ਜਨ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਵੈ ਨਾਉ
1: ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ

दरवाजा पहले हुंदा है। घर बाद दे सो दर के हा, सो घर के हा जित वै सर्व संभाले। एक होर भी अर्ज करदे हां, परमात्मा निराकार है, आकार तो रहत है। इनू बयान करके मैं अगे चला। सारा आकार उस तो आउंदा है जिहदा कोई आकार नहीं, सारे रूप उस तो आउंदे ने जिहदा कोई रूप नहीं, सारे रंग उस तो आउंदे ने जिहदा कोई रंग नहीं। चकर चैन अर वर्ण जात अर पात नहिं जे, रूप रंग अर रेख बेख को कह न सकत। अरूप हैं अनूप हैं, या इंज कह लो सारे मजहब भी उस तो आउंदे ने जिहदा कोई मजहब नहीं है। ऐ शब्द भी सुन लो महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी दे, नमस्तंग अमजबे, नमस्कार है प्रभु तैनू, तेरा कोई मजहब नहीं, कोई मजहब नहीं। नमस्तंग अमजबे, नमस्तस्त अजबे, ये अजब स्वरूप परमात्मा तैनू नमस्कार, तेरा कोई मजहब नहीं। ना तू हिंदू है, ना तू मुस्लिम है, ना तू सिख है, ना तू ईसाई है, ना तू यहूदी है, ना तू पारसी है, ना तू जैनी है, ना तू बौद्धी है, तेरा कोई मजहब नहीं, तेरी कोई जात पात नहीं, तेरे कोई तात मात नहीं, तेरा कोई मजहब नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बड़ी हिम्मत ते बड़ी जुरत दिखा रहे ने थे, नमस्तंग अमजबे, नमस्कार है प्रभु तेनू, तू अमजब है, तेरा कोई मजहब नहीं। मजहब एक रास्ता है, मजहब का अगर कोई माण भी कर रहा है तो रस्ते दे चे, ठीक है रस्ते चे, घर तक पहुंचने वास्ते रास्ता चाहिए। घर पहुंच गया कोई मजहब नहीं, क्योंकि जिसका घर है, जिसके घर दे चे जाना है, उसका कोई मजहब नहीं। सारिया नदियां सागर की तरफ जांदियां ने, हर नदी का किसी मुल्क नाल भी संबंध है, कुछ धार्मिक क्रियावां नाल भी संबंध है, इलाके नाल भी संबंध है, ते हर नदी का अपना नाम भी है। ये गंगा है, जमुना है, गोदावरी है, नर्मदा है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चनाब है, जेलम है, ब्रह्मपुत्र है। इन्हां दा इलाकियां नाल और मुल्क नाल संबंध है। असी कह सकते हैं दरिया हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान दे च वगदा है। फिर इन्हां दे नाम ने, फिर दजला है, फरात है, ये इराक दे विच वगदे ने, तो मुलक ते इलाके दा संबंध उन्हां नाल जुड़ंदा है भी। ये दरिया इराकी ने, इराक दे ने, उत्थे वगदे ने, दजला फरात उत्थे वगदा। नील नदी मिस्र दे च वगदी है, तो असीं कह सकदे हां इह ते मिस्री है, इजिप्शन है, मिस्र दे च वगदी है। उस इलाके नाल इसका संबंध है, इसका नाम है। थेम दरिया इंग्लैंड दे च वगदा है, असी कह सकते हैं इसका इंग्लैंड नाल संबंध है, इसका नाम थेम है। पर जब सारे सागर दे चलीन हो जाते हैं, सारिया का नाँ इको हो जाता है कि सागर, ना गंगा ना जमुना, ना सतलुज ना ब्यास, ना रावी ना चनाब, ना गोदावरी ना नर्मदा, ना दजला ना फिरात, ना नील ना थेम। जब भी कोई प्रभु दे चलीन हो जाता है, गुस्ताखी माफ मैनू कहण देना, ना वो हिंदू है, ना सिख है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, ना जैनी है, ना बौद्धी है, ना यहूदी है, ना पारसी है। जितने चिर तक पारसी है, यहूदी है, हिंदू है, इतने चिर तक नदी तो है, सागर नहीं है, नहीं है, समुंदर नहीं है। मेरे ख्याल इतने ही शब्द बर्दाश्त कर सकोगे, इतना ही कहना मैं। कई बड़े तारकिक होंगे, कट्टर बड़े होंगे, और कमाल की गल, अकल तो बिना अकल का दावा, अकल नूं ते छिके ते टंगे होए अकलमंद होने का दावा धार्मिक जगत दे इस तरह चलता है। फिर पता की है, किसी एक कद नूं अकल आ जाए तो इस तरह की गल कवे, फिर कटो उसके बंदबंद, बिठाओ उसनूं तत्ती तवी ते, कटो उसकी गर्दन चांदनी चौंक दे, ईसा सोली ते लटकदा पिया। मुहम्मद साहब दे बदर की लड़ाई दे अगले दो दन तोड़ दिते गए। सुकरात नूं जहर का प्याला दे के मार दिता गया। हुण पुछिए एक नूं तुसी सूली

0: तलावा ऐसा तकिया,
1: पहली बार है तलावा ऐसा तकिया,
0: बोले इको जे हसब नाले रखिया,
1: बोले इको जे हसब नाले रखिया,
0: तू भी आउंदा चोला स

हट खोल लिया सौदा रहन गए नसीबा वाले गुरु प्यारियो गुरु बाबे नानक दा हट जिहड़ा उदों खोलिया होया सी ना 550 साल पहला वह अज भी हट खुला होया पर साडियां नजरां दे कोलों पहचान ना होया जिहड़े इस गुरु नानक दी हट्टी तो सौदा लै गए वह फिर गुरु वर्गे बन गए। बाबा लैणा जी सौदा लैण आए सी गुरु बाबे नानक दी हट्टी तो सतगुरु महाराज जी दे दर्शन करके ओ गुरु बाबे दा रूप बन जांदा लैणे।

मुनि संकर ये सारे नखेड़ के उचारण करने जिमें उचारण किए हैं भाव पूरे टका के अलग अलग सारे अलग अलग नाम हैं ब्रह्मा बिशन रिखी।

वैराग है, समदृष्टि है, प्रेम है, निर्वैरता है, निर्भयता है, ऐसे ऐसे शब्दां नू गाणा, परमात्मा दे गुणा नू अपने जीवन विच प्रगट करना है। और जो नहीं गांदा साहिब कहिंदे ने गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत केन, कहो नानक हर भज मना जे बिद जल को मेन। तो मैं मुख्तसर करना, समाप्ति करना, क्योंकि गुरमुख प्यारे ने जथे ने एक शब्द भी पढ़ना। परमात्मा प्रगट है अपने शब्द दे रहा है, मनुख प्रगट आंदा है अपने शब्द दे रहा है। परमात्मा दे अखरी अर्थ ने प्रकाश, जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है वही शब्द दे रूप गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है, और जो शब्द नू प्रगट कर देवे उसनू अवतार कह देंदे। गीता दे राहें परमात्मा दा ज्ञान प्रगट होया तो कृष्ण अवतार श्रेणी च आ गए। कुरान दे राहें खुदा दा ज्ञान प्रगट होया, इन्हां बोलां दे राहें वो आवाज प्रगट होई तो मुहम्मद साहब पैगंबर बन गए, अवतार श्रेणी च आ गए धन गुरु नानक देव जी महाराज। प्रभु दे बोल, खसम दे बोल प्रगट होए। कदों प्रगट होते हैं? जब मनुख का अपना मन चुप हो जाए तो परमात्मा दे बोल सुनाई देते हैं। जिन्हों सुनाई देने लग पैन संत है, भगत है, पर जिड़ा सुन के प्रगट भी कर सके उन्हों अवतार कहते हैं, उन्हों पैगंबर कहते हैं, कोई अवतारी पुरुष। एक छोटी जी गाथा दे राही मैं इसनों स्पष्ट करके समाप्ति करते हैं। जैसे हरनाकच के घर भगत प्रहलाद, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी कहती कलरी धरती दे जिवें कमल का फुल पैदा हो गया। कलरी धरती दे हरनाकच के घर इन्ना वड्डा भगत, इस तरह औरंगजेब के घर जेबल नशा पैदा हो गई सी, उसकी बच्ची बड़ी धार्मिक सी। जिस तरह दुष्ट हरनाकच का यह बच्चा ब्रह्मज्ञानी होया, इस तरह महान जालिम उस बादशाह की बच्ची बड़ी धार्मिक सी। शायद आपनू पता होवे इन्हें उपनिषदां दा तर्जमा जो है ट्रांसलेशन कीती सी, पर्शियन दे तर्जमा कीता सी, फारसी दे लिखे दे ग्रंथ मिलते हैं लखनऊ म्यूजियम दे। और फिर इसने कुरान नू ढालिया संस्कृत दे, तुसी खुद अंदाजा लाओ, और कविता दे डालिया नजम दे, इन्ने विद्वान से किदे विद्या भरे बहुत सारे बोल ने किसी वक्त होया थोड़े सामने रखांगा मुख्तसर। इदे बोल एक फकीर कोल गांदे आया, एक फकीर ने सुने, लंबा चौड़ा इतिहास, इतना मुतासर होया, इतना प्रभावित होया, उन्हें अर्जी दे दी औरंगजेब के दरबार। आखे जिस दे अंदर ऐसा खुदाई अलहाम प्रगट होया है, मैं उदी जियारत करनी है, मैं उदे दीदार करना है। हुण इस्लामी शरा दा पाबंद, 13 साल की बच्ची हो जाए इस्लाम दे बुरका पहरा देने, पर्दे च रख देने। जेबुल नसा 40 साल की हो गई सी, औरंगजेब ने शादी नहीं की थी सी। कारण तिने भरा मार दिते, भतीजे मार दिते, प्यो नूं जेल दे तड़पा तड़पा के मारिया। फिर ख्याल आया बच्ची का मैं विह कर दया, किधरे जवाई मेरे को तखत ना खोल ले, नहीं किया गया। जेबुल नसा ता जिंदगी कुआरी रही है। जेबुल नसा के कुछ संस्कार ते दूजा उसने यह देख लिया, प्यो ने मेरा घर ते वसाणा नहीं, मैं अपने हिरदे के घर दे खुदा नू क्यों ना लिया। बंदगी कर लग पे, अठे पैर नाम जपन लग पे, कुरान की तलावत करती है, तस्बीह फेरती है, अल्लाहो अल्लाहो जपती रहती है। और जिहड़ा मनुख इतनी मेहनत करे, इतनी साधना करे, तो कुछ ना कुछ ते रस, कुछ ना कुछ ते अनुभव उसकी जिंदगी प्रगट आंदा, प्रगट हो गया। उहदे बोलां विच बरकत आ गई, उहदे बोलां विच सत्य आ गई, उहदे बोल मुतासर कर लग पे। वो फकीर इतना मुतासर होया, उन्हें अर्जी लिख दी, और औरंगजेब आपे तो बाहर हो गया। इन्हें जरूरत किस तरह की थी? लेकिन फकीर मनिया, पर मनिया फकीर सी,
मुसलमान जिसकी कदम

0: अश्वमेध जग की जय, सोना गर्भदान जी जय। सोना फरूट विच रख के जिवें पेठा नहीं हुंदा, चीर के विच सोना भर दिता, उत्तों बंद कर दिता किसी नूं पता ना लगे। गुरु ग्रंथ साहिब दुआई देख के कहिंदे ने लोको समझो इस गल नूं, बनारसी तीर तप करै उल्ट तीर्थ मरै, अगन दह काया कल्प की जय, अश्वमेध जग की जय, सोना गर्भ दान दी जय, राम नाम सर तऊ न पूछै। श्री भगवान भजे बिन पूपत, राम नाम सर तऊ न पूजै, छोड़ छोड़ रे पखंडी मन, कपट न कीजै खरका नाम नितै नित दीजै। गंगा जो गोदावर जाइए, कुंभ जो केदारा नहाइए, गोमती साहस गौ दान कीजै, हजारां गावां दा दान कर दे तू गोमती दे कंडे। ए भी नदी महाराज कहिंदे ने आत्म जो नरमाइल कीजै, आप बराबर कंचन दीजै, राम नाम सर तऊ न पूजै। अस दान गज दान, सेजा नारी भूम दान, ऐसो दान नितो नित कीजै। घोड़िया दा दान कर, गवां दा दान कर, इस्त्री दा दान कर, पर सच्चे पातशाह कहिंदे ने सिमरन दे तुल कुछ भी नहीं।
1: Need help navigating our ever-changing real estate market? Goodale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Goodale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at goodalebaudgroup.com.

तो फिर पुरुष के अंदर नारी भी अद्धी है, ये भी मर्ज कर दे। पुरुष पुरुष रूप दे च पूरा है, ये अंदर नारी अधूरी है। नारी नारी दे रूप दे च पूरी है, ये अंदर पुरुष अधूरा है। इस वास्ते विपरीत की कशिश है, कोई स्त्री स्त्री की कशिश दे च नहीं जीवती, पुरुष की कशिश दे जीवती है। कोई पुरुष पुरुष की कशिश दे च नहीं जीवता, गुस्ताखी माफ, स्त्री की कशिश दे जीवती, विपरीत की कशिश। एक पुरुष स्त्री की कशिश दे जीवता है, एक स्त्री चाहे मां होवे, चाहे बहन है, चाहे पत्नी है, चाहे धी है, विपरीत की कशिश। एक स्त्री पुरुष की कशिश दे जीवती है, यह पुरुष चाहे पिता है, चाहे भरा है, चाहे पति है, चाहे पुत्र है। स्त्री लड़की तो संतुष्ट नहीं होगी अगर उसकी लड़की होगी, लड़की जैसी तो है, ये भी मैच कर दें। पुत्र तो संतुष्ट होगी, विपरीत की कशिश है। तो जीवन भर जे मनुख विपरीत की कशिश दे जीव है। धार्मिक मनोविज्ञान ये कहता है पुरुष बिरद होंदिया होंदिया स्त्री जैसा हो जाएगा, उसके अंदर बर्दाश्त का मादा बढ़ जाएगा, उसके अंदर हलेमी आ जाएगी, और हो सकता उसकी आवाज दे भी बारीकी आ जाए, उसके अंदर सहन शक्ति भी बढ़ जाएगी, स्त्री जैसा हो जाएगा। अगर स्त्री एक ढंग नाल जीवीए बिरद होंदिया होंदिया पुरुष जैसी हो जाएगी, उसके अंदर घर बार की पकड़ बढ़ जाएगी, जिम्मेवारी ज्यादा लेगी, हो सकता है आवाज दे भी भारी बनना हो, क्योंकि सारी जिंदगी विपरीत की कशिश दे जीवी है। पुरुष की कशिश दे बिरद होंदिया होंदिया पुरुष जैसी सुभाव करके हो जाएगी, ये भी मैं अर्ज कर दिया, हो जाएगी। घर दे खास करके भारत दे ते एशिया दे मुल्कां च सस दे नूं दा झगड़ा की है, बिरद स्त्री सस पकड़ जकड़ ज्यादा रखती है, उम्र दे वध्या पकड़ जकड़ वध जांदी है, ते घर दी हिस्सेदार एक होर आ गई है, उन्हों वैल्यू नहीं देंदी, उन्हों वो स्थान नहीं देंदी, तो कलेश खड़ा होंदा है। एक स्त्री अगर ढंग नाल जीवी है पुरुष होंदे आउंदे आ स्त्री जैसी हो जाएगी। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी, धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ते है, ये मनोविज्ञान भी है और ये साइंस भी है, विज्ञान भी है, ये संगीत दा भी खजाना है, कविता दा भी खजाना है। ये हुण मनुख दी मर्जी उसने किस पक्षों खोज करनी है, ये संगीत दा भी सागर है, ये कविता दा भी सागर है। मैं ते गुजरी दे इतने सारे रूप देख के दंग रह गया, और गौड़ी दे अनेका रूप देख के दंग रह गया। गुरु ग्रंथ साहब दे गौड़ी पूर्वी मल्ला पंजवा, पूर्व दी गौड़ी, गौड़ी चेती, गौड़ी ग्वारेली, गौड़ी बैरागन, हद हो गई, इनिया गौड़िया, गौड़ी दे इतने रूप। खैर ये मेरा इस वक्त प्रकरण नहीं है, कविता का भी खजाना है, संगीत का भी खजाना है, विज्ञान का भी खजाना है, मनोविज्ञान का भी खजाना है, आत्मज्ञान का भी खजाना है। किसी भी पक्षों से खोज करिए, ता जाके जो है खेड़ बन गई है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा आई को अतवाई। एक छोटी जी बच्ची प्यो दी परिक्रमा करती है बार बार, प्यो नू वेख के खुश होंदी, मां नू वेख के नहीं, मां जैसी तो है ही, तो है ही। बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, गुरु नानक, छोटी बच्ची प्यो दी तरफ बजदी, प्यो दी परिक्रमा करती, प्यो दे पैरां नाल लट जो है लिपटती है। कारण विपरीत दी कशिश। मैं फिर अर्ज करा, स्त्री जीवदी है पुरुष दी कशिश दे च। ए पुरुष चाहे पिता होवे, चाहे पति है, चाहे भरा है, चाहे पुत्र है, पुरुष जीवन